तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला। नानक करके गोले, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो, जिस पास बैठिया सोही सब नो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सुरठ महला पंजवा।

क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौं तुद बिन अवर न जाणा, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवै है जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन ना

हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियहु रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु।

मेरा नाम अभिजीत सिंह है। मैं दोनों मूल मंत्र के चार शब्दों के नाम सुनाऊंगा। एक ओंकार, ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निरपर निरपा अकाल मूर्त आजुनी सैपं गुरप्रसाद जप आठ सच जुगाड़ सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार चुपे चुप न होवे चलाई रे फटार पुक्या पुक्र उतरी चे बढ़िया बुढ़िया पार सांस प्राम पर रखोवे के एकता चले नार के सचारा होइए के कूदे टूटे पार हुकम जाई चलना नानक लिख जा नाल तन तन बाबा अजीत सिंह जी तन तन बाबा जुजार सिंह जी तन तन बाबा चुरावा सिंह जी तन तन बाबा फतेह सिंह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है भानी कौर, मैं 7 साल दिया। अज मैं श्री गुरु अर्जन देव जी दा गोबिंद गोबिंद मैं शब्द उच्चारण करेंगी। राग बिलावर महला पंजा पावन अंग 822 ते है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सा

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम शरण कौर है, मेरी उम्र 7 साल दी है। ए शब्द राम नाम जो जन जपै, श्री गुरु अर्जन देव जी राग बिलावल विच उच्चारण कीता गया। यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग नंबर 817 उपर दर्ज है। इस शब्द विच गुरु जी सानू दस रहे हैं, जो मनुख प्रभ के नाम जपता है उन्हें कोई डर नहीं लगता।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अनोरा शर्मा है। अज मैं तुहाडे सामने गुरु अर्जन देव जी का शब्द राखा एक हमारा स्वामी पेश करांगी।

0: वाजिक खालसा वाजिक की फतेह।
1: ए सन अवनीत कौर, हुन गुरु तेग सिंह प्री स्टेज ते आजन, ते रहानी कौर ते प्रभगुन सिंह बैक स्टेज रेडी रहन।

0: संत की राज करेगा, राज करेगा। बोले सोनियाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फटे।
1: ए सन गुरु तेग सिंह, हुन रूहानी कौर प्रीस्टेज ते आजन, अते प्रभगुन सिंह अते दिलावर सिंह बैकस्टेज तैयार हैं। ते ए 5 तो 8 दा एज ग्रुप है।

0: जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, यह सी अखीरला पार्टीसीपेंट 5 to 8 साल के ग्रुप के बच्चों का सोलो गायन दे विच। आप जी सामने बच्चों ने बड़े प्यार दे नाल शब्द गाविया है, शब्द नू गाविया बड़े बड़े प्यार दे ढंग दे नाल। यह ग्रुप इत्थे खत्म हुंदा है ते अगला ग्रुप जो है तबला इंस्ट्रूमेंटल दा ग्रुप, वह अंडर टेंस वाले 10 साल के ग्रुप के बच्चों के उन्हें अगर बेनती है कि वह अगर आ जाए। मैं जज साहबान बेनती करांगा, वीर हरशपाल सिंह जी, वीर नरेंद्रपाल सिंह जी, कि वह हुण ब्रेक लै लैन, काफ़ी समा हो गया इन्होंने बैठे। बहुत बहुत आप जी का कोट आन कोट धन्यवाद शुक्र है, बहुत बहुत तह दिलों आप जी धन्यवाद किया जाता। आप थले जाके चाह पानी लंगर पानी छको, तो फिर मैं अगले जो जज साहबान साढ़े हैं वीर राजविंदर सिंह जी, जिन्हों बारे मैं आप जी ने जिक्र किया हमने कि आप पंजाब घराने जो सिख कौम के अंदर कोई पंजाब घराने वो जाने वाला है वह वीर राजविंदर सिंह, तो उन्होंने नाल मेरे छोटे वीर वीर कुल वीर जी आ जाओ अगे आ जाओ, उनका नाम की भुल गया, हाँ वीर कंवलजीत सिंह जी, मैनू एकदम नाम विसर गया सी, दस्सा सिंह खेमा करना। वीर कंवलजीत सिंह जी और वीर राजविंदर सिंह दोवां भरावां नूं बेनती है कि आ करके संगतां सन्मुख होकर के बच्चों की जो वैसे तो मैं कहना हुंना कि जिहड़ा जिहड़ा बच्चा सिख परिवार के भी जन्म लै लिया ना उहनूं किसी नंबरां की लोड़ नहीं हैगी, 100 नंबर लैके ही आया जी। पर बच्चों हौसला अफजाई करने वास्ते असं कुछ थोड़ा बहुत एक साधन जहा बनाया, पर मैं बेनती करांगा वीर राजविंदर सिंह जी और पास अते वीर जी होर पास आ करके कंवल जी वीर कंवलजीत सिंह और पास कि आ करके आप बच्चों की सेवा करो। इस आओ मैं बच्चों बच्ची बीरजोत बीरजोत सिंह हु इज़ नैक्सट इस जो तबले वाले बच्चों का जो है नाम जो है मैं बच्ची जपजी को बेनती करांगा बच्चे आ करके संगतों के सन्मुख करके दसिया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, हाँ वाहेगुरु जी की फतेह। तबले वाला
2: हुण असीं 10 साल के छोटे वाले बच्चों का तबला दा शुरू करना है। सब तो पहला ज्ञान सिंह प्री स्टेज ते आ जन, निर्वैर सिंह अते प्रथम कौर बैक स्टेज ते आ रहे हैं।

प्यारी सात संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी ने तीन ताल दे पेशकर कायदा अते तिन पलते सुनाऊंगा। इस दे विच 16 मात्रा ते 4 विभाग ने। तीन ताल विच एक मन से 13 ते ताली है अते 9 ते काली है। प्यार ना शरण करो जी अते असीस बख्श।

एहसान कीरत सिंह हुन सिद्दक सिंह प्लीज स्टेज ते आ जान अते हरतेक सिंह ते जोयताज सिंह बैक स्टेज तैयार रहन।

जी का खालसा वाहेगुरु जी का की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे नाम हैगा प्रिंस परमवीर सिंह। आई एम सो हैप्पी टू प्ले दिस तबला। सारा नो मैनू बख्शिश करो जी। मैं हुन 3 ताल बजाऊंगी।

0: बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना आशीर्वाद देकर रखना। असी पहली बारी ऑस्ट्रेलिया आए हाँ, ज़्यादातर असी अमेरिका दे विच विचरदे हां, पर आप सारयां दा प्यार देख के, मुहब्बत देख के, लगन देख के छोटे छोटे बच्चों की बहुत आनंदित हो रहे हैं। जी नहीं करता उठन नूं, पर सानू सारयां नूं पता है समय दी नज़ाकत नूं सानू सारयां नूं समझना पैना। आप सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कोटान कोट शुकराना जिहड़े अपनी गोद विच बैठण दा सुभाग समां बख्शिश करदे हां जी। बहुत धन्यवाद। होईयां गलतियां भुल्लां चुक्कां लिखी मां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: अवसाद सिंह जी बड़ा बड़ा धन्यवाद छोटे वीरां दा, बड़े प्यार दे नाल वज्जत दे विच आ करके आप जी दे सामने इन्हां ने शब्द आप जी नूं सरवण करवाया है। आओ इस तरह अपनी लड़ी नूं अगे तोरदे हुए आपां अगे वधीए। छोटे वीर ने तबले दा आप जी ने सरवण कर ही लिया, कह बेकी सोभा नहीं देखा ही प्रवान। गुरु पातशाह जी ने बख्शिश करते हैं इसी तरह ही, जिस तरह अज ने सेवा की है। गुरु पातशाह होर चढ़ती कला बख्शिश करन, इस तरह सिख संगतां दी गुरमत संगीत दे राही सेवा करते रहन। तो मैं अगे असी अड़ी नूं होर तोरीए जो अखीरला ग्रुप साडा हुण चलना 21+ तो जिहड़े बच्चे हैं, मैनूं लगता सारे बच्चे आ गए होणगे। अनंत दो बच्चे आए ने साडे कोल इस वक्त, तो इस वक्त साढ़े को दो पार्टिसिपेंट्स पहुँचे हैं। मैं वीर गगनदीप सिंह और डॉक्टर गगनदीप सिंह और आके जजमेंट वास्ते जो बच्चों वास्ते तुम आ जाओ नाल छो वे वीर वीर जस रशपाल सिंह जी और बड़े प्यार के नाल बड़े तुम बड़े गुड पूरे पूरे गुजे हुए हो महाराज। तुम एन पूरा निठ के जो करते हो ना जजमेंट स्वाद आ जाता जी, जो तो आप जी संगत करी दी जो मजा आ जो जी तुम्हें जोड़े वो छोटे छोटे बच्चों किए हुए जोड़े वो निके निक क्रिंतन जो पकड़ते हो ना बच्चों के, मैनू बड़ा प्यारा लगता जी। यही चीज़ हैगी जी, असं यही तो चीज़ लभनी बच्चों के बच्चों में लभ के असी बच्चों प्रेरना भी आओ तुहाडे च कि गुण हैगे ने। गुरु बख्श करे आप जी होर चढ़दी कला बख्श कर। मैं वीर जी ने बेनती करा आ करके बच्चों के जो अगले दो बच्चे दो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जजमेंट कर देन। तो मैं वीर पुनीत सिंह होर बेनती कराँगा कि बच्चे जोड़े अनाउंसमेंट करने वाले सन मनोद सारे अच्छा चले गए हो। चलो मैं बेनती कर देव मैं इतने फड़ा दौ कि बच्चे ने दो मैं मैं इतने बोल दिना एक बार फिर एक बार उठ जावा। हाँ जी मैं बेनती करा बच्ची सिमरप्रीत कौर उस स्टेज पर आ जाए। तो इस तू बाद जो बच्ची है दिलशीन कौर वो भी स्टेज के पिछे आ जाए ता जो असं समा बचा सकी। ते आओ बड़े प्यार दे नाल बच्चे 21 साल तो प्लस बच्चे हैं मैं असं काफ़ी कुछ समझते हैं कि आप जी बड़े सोहने ढंग दे नाल संगतां नूं सरवण कराओगे प्रोफेसनली मैं समझांगा तुहानूं पुत्र। आओ बड़े प्यार दे नाल आप आके संगत की सेवा करो। दस वालों फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
2: राजा पुत्र जी

जप तप संयम धर्म नांक माया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसा कुरसा चटी है तुद जिठे सच्चे पातशाह

0: करो।
1: गुरुदेव संगत प्रब मेल कर कृपा हमूर पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
0: गुरुदेव नानक हर नमस्कार। वाहे गुरु जी का खालसा।

0: सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम प्रभ के सिमरन गर्व ना बस प्रभ के सिमरन काल पर प्रभ सिमरत कुछ बिगन न लागे प्रभ के सिमरन पौ न व्याप
1: सिमरन दुख ना संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग प्रभ के सिमरन स्थित नौ निध
1: सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभ
0: के सिमरन तीर्थ स्नानी
1: सिमरन दर के मानी
0: प्रभ के सिमरन होए सुपला।

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई
1: मनुआ नाम तेरे संग सहाय
0: जय मां बहन दूध जम दले
1: केवल नाम संग तेरे
0: जय मुश्किल होवे अत पारी
1: हर को नाम के माए उधारी
0: अनेक पुण्य जन करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट बाप
0: हर मुख नाम जप मन मेरे
1: नानक पावो सुख ने
0: सगले सृष्टि को राजा दुखिया
1: हर का नाम जप तो सुखिया
0: लाख करोड़ी बंधन पर
1: हर का नाम जप निस्तर
0: अनेक माया रंग दिख न बुझावे
1: हर का नाम जप दगावे
0: जे मार्ग ये जात केला
1: तेरा नाम संग हो सुहेला
0: ऐसा नाम मन सदा त्याई है
1: नानक गुरमुख परम गत पाई है
0: उठत नहीं कोट लखबाई
1: नाम जपत बार पराई
0: अनेक बिगंजे आए श्रृंगार है
1: हर का नाम तत्काल उदार
0: है अनेक जोन जन में मर जा
1: नाम जपत पावे सरा
0: ओ मैल हमल कबू न तोवे
1: हर का नाम कोट पाप होवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक पाई है साध के संग
0: जे मार्ग गगन जाए न कोसा
1: हर का नाम हुआ संग तोसा
0: जय बेंडे मांद गुबारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जहां बन तेरा को नासियानु
1: हर का नाम ते नाल पुछानु
0: जय मां बयान तपत भव काम
1: तेरा हर के नाम की तुम परशान
0: जहां त्रिखा मन तुझा कर खे
1: नानक आरार अमृत बर खे
0: पगत जना की बर्तन नाम
1: संत जना के मन विसरा
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उतरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर लोक साध गवाच
0: हर जन के हर नाम निदार
1: पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक है
1: नानक जन के बिरत विवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
1: हर के नाम जन को प्रीत पुत्र
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की बड़ियाई
1: हर के नाम जन को पापाई
0: हर का नाम जन को

दुख जाए। नानक बोले सहज पाए, साधना की सेवा लागे, हर हर नाम हृदय सतगावे, साध संगे होम जोरे, साधना की सन्नी परे, नानक ताके बल बल जासा, साध संग जाके मिले विमान, सो गणीय सब देव उचा, हर हर नाम दिन कट कट जीना, पेके सर्व श्री साधना।

अंतर्यामि आपण संगा प्रभाते नानक अवर न जानस कोए हर को नाम जप निर्मल कर्म सात संग दुर्मत बल हिरिया हर का नाम जपो जी सदा हर को जस नरसिंह।

0: भी दस वस्तु ले पाछे पावे
1: एक वस्तु कान भी खोट गवावे
0: एक बिना दे दस भी हिर ले
1: तो मुड़ा कहो का करे
0: जिस ठाकुर से नाही चारा
1: ठाकुर की जय सत नमस्कार
0: जाके मन लागा प्रभ मीठा
1: सर्व सुख ताम मन भूटा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व दुख नान तिन पाया
0: अगनत साव अपनी दे रास
1: साध भी परते नंद उलास
0: अपनी अमान कछ भोर साव ले
1: अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रति तापी खोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी वस्त सागे रखे
1: प्रभु की आज्ञा माने माते
0: उसते चौगन करे निहाल
1: हरि
0: हाथ माया के हित की छाया सुरंग लावे
1: मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार से जो लावे ने मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कृपा नानका ले लाई
0: मिथ्या तंदन कुटुंब सबाया
1: में ममता माया
0: मिथ्या राज वंदन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ति अश्व वस्त्र
1: माया
0: द्रोमो अभिमान अस्थिर भगत साथ की शरण
1: जब जब जीव हर के चरण
0: विद्या स्वर्ण पर निंदा सुने
1: विद्या
0: नेत्र पेकत पर त्रिय रूपा
1: विद्या रचना भोजन स्वाद
0: विद्या चरण पर विकार को धावे
1: विद्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन्नई पर उपकारा
1: विद्या मांस लेत विकारा
0: बिन बूझे मिथ्या सब भये
1: सफल।

0: सुखे दी जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: योगी बन के निरार धाम।
1: धन धन तेजन जय गण बस्यो हर नाम,
0: नानक जाके बल बल जाओ।
1: रहत अवर कछर कमावत,
0: माने प्रीत मुखो गुण गावत।
1: जानन हार प्रभु पर बीन,
0: बाहर बेग न गाऊ पीन।
1: और उपदेश से आप न करे,
0: आवे जब जन में मरे।
1: जिसके अंतर बसे निरंकार,
0: जिसकी जीत तरह संसार।
1: जो तुम भाने तन प्रभु जाता,
0: नानक गुजन जन प्राता।
1: करो बेंती पार ब्रह्म सब जानने,
0: अपना किया पे माने।
1: आप करते बेरा,
0: इसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा।
1: पाव से आनव सगल तेरे,
0: सब को जाने आदम की रहत।
1: बावे तिस लय लड़ लाए।

0: राष्ट्रपति।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप
0: जैसे जल में कमल लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख
0: जैसे सुसर को सोख।
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे
0: जो वसुधा को खोदे को चंदन लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक नाव
0: नानी जो पाव का सह स्वभाव।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैं न लागे जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे धरु पर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदस्य
0: मान।
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
0: मन अपने है सबसे नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी सेजन पे
0: नारी जिन पर बात करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: वंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए सफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी सन सकल उदार
0: नानी ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के वसे प्रसंग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम उदार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जाग
0: ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
0: ब्रह्म ज्ञानी संगीता
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंता
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस वट भागी पाई
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश
0: नानी ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाया दाग
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानी ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विदाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की
0: शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सरकार धनी सलोक उद्धार जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक को अपर सगल निस्तार अस्तुदी मन में प्रीत निरंजन दरस साथी डर संग संग हेत सबते जाने आपस को मंदा मन की वासना मनते टरे ऐसा परस मिशन की माया ते हो भिन्न वैष्णव का निर्मल धर्म केवल भगत कीर्तन संग राचे सब ऊपर हो के पाल नानक हो वैष्णव परम गत पावे सगल त्यागे दुष्ट का संग कर पूजे सगल पार ब्रह्म तिस भगवती की मत उत्तम हो गए मानता न पे वसन प्रीत नानक ऐसा भगवती भगवान को पावे राम नाम आत्म में सुध है उस पंडित के उपदेश जग जीवे सो पंडित फिर जो नावे सुखम में जाने स्थूल नानक उस पंडित को सदा देश चौवन नामे जपे को नाम सासं पावे जन कोए पस प्रेत मुगत पाथर को जारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक तिस मिले जिस लिखिया दुर्कर्म जिसका नाम सतराम दास लाज दसंतन भाय तिन पाया सोदार दरगे परमान तिस दास को सब सोजी पर है ऐसी जीवत नानक रामदास जीवन मुखत सो कहा है सदानंत नहीं वियोग तैसा अमृत ऐसी बिखाटी तैसा रंग तैसा राजान नानक हो पूरा कहिए जीवन मुखत जिज जिद गा राखे तैसा तिन्नाओ प्रभावे सोई पुनोग लखे न जाए पार्वम के रंग

कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट अभिसर होते, कई कोट कब का बिचारे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट अभिगातम निकोर, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट पर देश ब्रह्माए, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रसभोगी, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट देव दान इंद्र से छत्र, नानक जिस जिस बाबे तिस तिस निस्तारे, कई कोट वेद प्राण स्मृत और शासत, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिरी में सुग्रंथी वे, कई कोट भूत प्रे सुकर मिराज, नानक आप अलिप्रया भरपूर, कई कोट नरक सुर निवासी, कई कोट बो जोनी फिरे, कई कोट गाले थक पाए, कई कोट माया में चिंत, नान सब कुछ प्रभु हाथे, राम नाम संग तिन निमलागी, आत्म में पार ब्रह्म जानते, तिनको मिलियो प्रभु अविनाश, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, नानी तेजन सदा धन धन, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई जुगत कीनो विस्तार, सदा सदा एक एक अंकार, प्रत्ये और ब्रह्मा स्मात, आपे आप नानी प्रभ सोए, तिनोवत आत्म प्रगास, सदा निहारे को नेत्रे, अमर वय सदी जीवे, आत्म सुख सह समावे, अपने जन को सास सास समारे, नानको परमेश्वर के प्यारे सलो, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण, जल थल मैयल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, खिन में थाप उथा पन्हारा, हुक में धार अधर राव, हुक में ऊंच नीच व्यवहार, कर कर देखे अपनी बढ़ियाई, तब भावे मानो गत पावे, तब भावे बिन सास ते राखे, तब भावे ता पते दुदारे, दुआ सिर्या का आप स्वामी, जो भावे सो कार करावे, को मानुक ते क्या हुए आवे, इसके हाथ हुए ता सब कुचले, अनजानत भिख्या में रचे, भर में भूला दे दिस धावे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, खिन में नीच कीट को राज, जाका दृष्ट कछु नावे, जाको अपनी करे बख्शीस, जियो पिंड सब तिस की रास, अपनी बणत आप बनाई, इसका बल नाही इस हाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, कहो ऊंच नीच में बसे, कहो निंद चिंद व्यवहार, कहो वेता ब्रह्म विचार, कहो नरत करे वो भात, कहो महाक्रोध विकराल, कहो भय भय बड़ राजा, कहो आपकी रथ में आवे, जिप पर रखे तिम ही रहे, कहो हुए पंडित करे व्याख्यान, कहो तट तीर्थ स्नान, कहो कीट हस्त पतंग होए जिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्योतिष भावे सोई होए, कहो सास संगते पावे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, संतन नाम रते एक रंग, जल में जल आए खटाना,

0: राज विमान
1: सोनक पाती होवत स्वान
0: जाने में जो बन बंत
1: सो वद विष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे
1: जन्म मरे बहु जोन ब्रह्मावे
0: भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे
1: नानक या मुकत आगे सुख पावे
0: धनवंता होए कर कर पावे
1: तृण समान का संग न जावे
0: बोलस कर मानु खूब पर कर आस
1: कल भीतरता का होए विनाश
0: आप जाने बलवंत
1: हिन्ने होए जाए बसवंत धर्म राय तिस करे कुआरी सोजन नानी दरगे परवान
0: कर्म करे हो तारे
1: सब पावे संगले विरतारे
0: मैं
1: सुर फिर अवतार
0: अनिक जतन कर आत्म निद्रवे
1: हर दरगे को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: इसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेन जागा मन होए
1: तो नानी ताकी ने मत सोए
0: जब लग जाने मुझते का छोए
1: तब इसको सुख नाही कोई
0: जब जाने मैं किच करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता तब लग नेचर नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा दे बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नाले खाओ छूटे
0: सहस घटे लाख को उठतावे
1: त्रिपद नावे माया पाछे पावे
0: भोग भिक्षा के करे
1: नै दितावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुबन मनोहर बिथे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़भागी के से प्राप्त होए
0: करावण आपे आप
1: सदा सदा नाले खर जाप
0: करावण करने हार
1: इसके हाथ कहां विचार
0: जैसी दृश्य करे तैसा होए
1: आपे आप आप सोए
0: जो कुछ किनो सो अपने रंग
1: सबते दूर सबू के संग
0: जय देखे करे विवेक
1: आपे आपे अनेक
0: मरे न बिन से आवे न जाए
1: नानी सदी रे असमाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप किनो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका वो करने हार
0: उसते पिन काओ कि छोए
1: हां तनंतर एक सोए
0: अपने चलता करने हार
1: तो करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माए
1: नानी कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुरु प्रसाद के नेवक

0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन सुबाते हीन, संत के दुखन तान भ्रष्ट होए, नानी संसंग निंदक भीतर है, संतन के दुखन काग जू लवे, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन सबको चले,
1: संत के दुखन नीति जाए,
0: नानी संत भावेता होए भी गत पाए, संत का निंदा खिंड करना पाई, संत का निंदा परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखिया दीन, संत के निंदक को सदा विजोग, नानी संत भावेता उसका भी होए मोख, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी सदा भिखारी, भी दुख ना सुख के टरे, नानी संत भावेता नहीं मिलाए, संत का दुखी कि काज न पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइए, जो साध ना मृत की लोथा, अपे ही खाए, नानी संत भावेता ने उबार, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, जो पावक ईंधन नहीं द्रापे, जो वाटर खेत माए दुएला, नानी ज्योतिष बावे सोई थे आ, संत के दुखी को दरगह मरे सजाए, संत का दुखी न मरे न जीवाइए, संत का दुखी उठ चले निराशा, जैसा बावे तैसा कोई होए, नानी जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार।

0: मानो की तू प्रीत्याग
1: सर्व अंतर एक हो सोए
0: गैर
1: अभी नहीं सुजाना कृपा दान दयाल बख्शंद नानक कह मन मान राव जो कर पाया सोई होग जिसका मंत्र जाने होर सर तो सुनिए करता के तपे तपी सर रस में भोगी नानक इस पुर को सगल देव हरे अब गाए सगल प्रभुई अपने सूत जनदास नाम ध्याने से जन्म मरे फिर आवे जाए जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना बे करे एक रंग प्रभु अविनाशी एक अंगार पूरे हो पूरन सब ठाए अपनी कीमत आपे पाए जब जब जीवे नारी खर नाओ नाम के दारे खंड ब्रह्मांड नाम के दारे सुनन ज्ञान ज्ञान नाम के दारे सकल आकार नाम के समुद्र से सुरवन
0: जिस अपने नाम लाए नाम चौथे पद में सोने गत पाए पुरुष सत केवल प्रदान
1: सत पुरुष समाए समाणी मूल सात सात उत्पत जिसे बुझाए जिसे सब पले जिसे
0: बुझाए विश्वास और नान गुरते पाई
1: सत रत
0: जाके हृदय प्रवेश
1: नाम जप ताकि गत होए आपे जाने अपनी मितगत अवन भूज कर विचार नान जो दुदावे सोबतिया इन गुजात साया स्वाद गुर के वचन पदार्थ लय जाके संग करे संसार जन के संग एक हृदय

0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ
1: ठाकुर
2: का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल गीत
1: ठाकुर को जाने संग
2: प्रभु का सेवक नाम के रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हार
2: सेवक की राखे निरंकारा नानी सो सेवक सास सास मारे
1: अपने जन का पत्ता डाके
2: अपने सेवक की सर पर रखे
1: अपने दास को दे बढ़ाए
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत रखे
2: ताकि घर में कोई न लाके
1: आपके सेवक को कोई न पूछे
2: आपके सेवक पूछते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
2: नानी सो सेवक दे दिस प्रगटाया बसम करे लश्कर कोट लाखे
1: जिसका सास न काटता
2: ताको राखत देकर हाथ
1: जतन करे पोपात
2: जिसके कर्तव्य थे जात
1: हारे न रखे अवर न कोई
2: सब यह का रखा सोए
1: सोच कह रे पनाए
0: जब नानक प्रभु लख बड़ानी
1: बारंबार बार प्रभु जपिए
2: पी अमृत के मंत्र रपिए
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
2: जिसके चवन नहीं दिष्टाया
1: नाम तन नामो रूप
2: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
2: मंतन नामे नाम सुमाने
1: उठ बैठ सोवत नाम
2: नाने सबके सब काम
1: बोलो जाजे बाजिन रात
2: प्रभु अपने जन की नीदात
1: अरे भगत आत्म के जाए
2: प्रभु अपने शिव रहे समाए
1: जो हुआ होत सो जाने
2: प्रभु ने कहा कम पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखराने
2: जिसका गुण का एक न जानो
1: आठ पै प्रभु बसे
2: हजूरे नाने सही जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन
2: जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु बिछाता
2: सो जन सर्व दुख का दाता
1: इसकी शरण सर्व सुख पावे
2: इसके दर सब पाप मिटावे
1: अमर से हम सगली छाड़
2: तिस जन की तू सेवा लाग
0: जान होवी तेरा
2: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सेवक होग सदा दयाल गुरु का सिंह विकार ते हट गुरु का सिंह वडभागी है नानी सतगुर सिख को जी नाल समारे गुरु की आज्ञा मन में सह हर नाम दे सद्यावे जिस सेवक के कार्य रास स्वामी आप नहीं कछ भरम नानक ऐसा गुरवड बागी पाई है पर सत चरंगत निर्मल रीत पार ब्रह्म की दर गए गवे संतो गातम पतिया ने संत मिलाए सतपुरख सर्वपुर अगम गोचर पर निर्वाणी ताकि गजमत के न पाए चन कमल हृदय सर्व जपने अमृत पीवे अमर सोए जाके मन प्रटे गुंतास
0: सच दे से भगो दे मन में राखे हर एक नानक परम गुरु के दास अनंत ब्याह दुख नाटे पाई साधु के पूर्ण उपदेश
2: सगल ब्याह मानते कहन से सास संग जप नाम मुरारी सुन नानक हर अर्ज श्रवण कला धार जिन सगली मोई अपनी कीमत आपे पाए सर्व निरंतर एको सोए भय पर गास साथ के संग रच रचना अपनी कल धारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਦਨਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮੈਂ ਉਧਾਰੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਉ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਸੋਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੋ ਸੋ ਬਜਰ ਕੀ ਸਮੀ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖਤ ਲਾਏ ਰਬ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਜੈ ਜਿਸ ਦਾਵਤ ਆ ਬੈਠਾਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਹਰ ਸੋਏ

0: जन्म मरे सो काचो काचा। आप प्यार शरण गुरुदेव हर हर सिमर प्राणदार सिमर सास देव बिचारे मन मन छतानि पल पाए संग न चालस तेरे दना सुख मीत कोटा मर बनता राज रंग माया विस्तार असस्ती रथ स्वारी जिन दिए दस पूजन अभिगाना गुर की मत्तू ले आने हर की भगत करो मन मीत चरण कमल राखो मन माए आप जपो अवरा नाम जपावो सार भूसत हर को नाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल होय अचिंत बसे सुखनाल चार स्यानव सगली मना हर पूंजी संच करो व्यवहार कौन नानक जाके मस्तक
1: जाके मस्तक
0: एक को जप एक को सालाए
1: एक सिमर एक को मन आए
0: एक कस के गुण गाओ अनंत एक को एक एक कर आप अनेक विस्तार एक ते भए
1: एक रात प्रसिद्ध के
0: मन तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलो फिर

0: सदा प्रभु के गुण गावो
1: सास सास प्रभु तुम्हें द्यावो
0: नानक मन सो लागे प्रीत
1: भगत करो प्रभु की नित नीत
0: एक ओट एको आधार
1: नानक मांगे ना प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए
1: हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चाख्या से जन तृप्ता ने
1: पूरन पूरक नहीं डोला ने
0: सुपर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाव साथ के संग
0: सनान सब त्याग
1: अंतर पर गास अंतिम निवलाग
0: भागी जपया प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
1: सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु यो दयाल
1: सेवक की नो सदा नियाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया नानी भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों विसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों विसरे जे किया जाने
0: सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया
1: सो क्यों विसरे जे जीवन जिया
0: सो क्यों विसरे जे अगन में राखे
1: गुरु प्रसाद को बिरला लाखे
0: सो क्यों विसरे जे बिकते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गांड है
0: पूरे तते बजाया
1: प्रभु अपना नानी जन दयाया आन त्याग जपो हर नाम आप जपो रे नाम जपाओ दिन भक्ति जनों सी चार बूढ़ा जात पाए विश्राम नानक नाम जपो गुंतास मंतन अंतर ही स्वाओ मन विकसे सात चरण धोए बिरला को पावे संग गुरु प्रसाद नाम जप लिया नानक रहा सर्व समाए भगत वचन सदा कृपाल सर्व घटा करत प्रतपाल प्राणधार भगत बार लावे मन हीत नानक तुम्हारी शरण पुरख भगवान एक नमक हर के गुण गाए हर के नाम की कथा मन भाई रसना जपती हर नीत हृदय से पूरन गुरमंत प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक परगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी पापन तक कते होता तब बैर विरोध किस संगमात तब हर शोको किसे व्यापत तमो का किस सोवत भरम नानक करने हार न दूजा तम बंद मुकत को किसको गनी तम नरक सुर को कौन अवतार तब श्री सगत कौ कित डाए तब कौन निडर कौन कत डरे नानक ठाकुर का अपार तय जन मन को कहा विनाशन तब जम की त्रास को किस होए तब चित्रगुप्त किस पूछत देखा तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे

0: ठाकुर आपे बर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार राष्ट्रपति आपे का विस्तार आपने बाणे लय समाए
1: आप सब जगत प्रोए सजना सोई जन पाए
0: नानक सगत श्रेष्ठ का जेता दीन दयाल नाथ को नाथ सो मुआ जिस मनो विसारे सबसे एक निरंजन नाए अंतर बाहर जानो साथ

सरस्वती। नाम प्रभु का लागा मीठा, अनेक रंग नाना दिष्टाए, देही में इसका विश्राम, ध्यान न जाइए अचरज विस्माद, नानक तेजन सोजी पाए, गड़ गड़ व्याप रहा भगवंत, सरल लोक पूरन प्रतपाल, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, चार कुंड जिसे समाए, गुरु प्रसाद नानी सुपाओ, ससियर सूर्य खत्र में एक, आप डोल न कबों डोले, मोल न पाइए गुणे अमोल, धार रहो स्वामी ओत पोत, नानक तिन में यो विश्वास, संजना के हृदय सब धर्म, सर्वव्यापी राम सरचन।

सत वचन साधु सब कहत करण करावन हार प्रभु जाने नानक दर्शन देख समोई भक्त सगली उत्पत तिस भावे ताए एक अंकार भावे तिस लय मिलाए आपे आप भरपूर नानक तिस जन आप बुझाए सर नैन आपे खनारा आपन जस आप ही सुना आगे गारी की निमाया जो किच कहना सो आपे कहे नानक जा भावे ता लय समाए और कहो कि नहीं कछ करा आपे जाने अपने जी की और पोत आपन संग राच दूसर होए ता सो जी पाए गुर प्रसाद नानक के जान आप मिलाए लय प्रभ सोए जीवन मुकज सदै भगवंत जिस प्रसाद सब जगत तराया मन के संचिता।

0: राष्ट्रपति पार ब्रह्म निकट कर पे मन अंतर की उतरे चिंद संजना की दूर मन मंग सास नगन सागर करो
1: नानक गुरु पूरे नमस्कार सास पद परमानंद
0: गुण गोविंद अमृत स्पियो एक रूप जाके रंग अनेक दुख भंजन पूरन कृपाल नानक जी का ये धार अमूली लाल रतन आप तरे लोके निस्तार जाके मन लागा हर रंग सुन सुन करे प्रभु गाजे नानक उतरे तिनके साथे कर कृपा प्रभु आप मिलाए अमृत नाम साथ संग लैन पूरन होई सेवक की सेव राम नाम सुन रसना कहते नानक निभई खेप हमारी सावधान एकागर चीत प्रकट सब लोए प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान सबके मन सगते उदास समदर्शी एक दृष्टेता।

गुरुदेव सगा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदब सोदरा गुरुदेव सात सदगुद मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक कर नमस्करा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।

0: श्रीमते राम कली की वार राय बलवंत तथा सतय डूमाखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो कीवदै नानक राज चलाया सच कोर सताणी नीवदै मतगुर आत्म देव दी खड़क जोर परा कोई जीद सेठ काद तो जीव दे सेठ काद तो जीव दे जो तुआ जुगत साय से काया फेर पलटिए करे जे गुरफुर माया से जो गलूनी चटिए खर्चे वित कसम दी आप खैदी खैर दबटिए तुद्रिठे सचे पाशा मल जन्म जन्म दी कटिए पुत्री कौन न पालियो कर दियो कान मरटिए जिन आखी सोई करे जिन कीती तिने थटिए
1: कौन हारे किनो बटिए कौन हारे किनो बटिए जिन कीती सो मरना को साल जिवाए साली
0: धर्म राय है देवता ले गल्ला करे दलाली
1: सतगुर आके सच्चा करे सबात होवे दरहाली
0: गुरु अंगद दी दोई फिरी सच करते बंद बहाली
1: नानक आया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली
0: दर सेवे उम्मत खड़ी मस्कले होए जंगाली
1: दरवेश खसम दे ना सच्चे बाणी लाली
0: बलवंड किबी नेक जन जिस बहुती छाव पतराली
1: दौलत बंडी है रस अमृत कीर के आली
0: गुर सिखा के मुख उजले मन मुख दिए पराली
1: कबूल सामना जा काल मर्दी काली
0: माता की भी सो सोए जिन गोए उठाली
1: सोए
0: जिन गोए उठाली नानक ईसर जगनाथ उच्चा दी बैन बिर क्यों चौदह रखत निकाली कर आवा गौण छिड़क्यों लैने दरियों छत्र सिर आसमान क्याड़ा छिक्योन सिखा पुत्रा गोप कै सब उम्मत देखो जे क्यों
1: जस दोस्त लैणा टिक्योन जस दोस्त लैणा टिक्योन फिर आया फिर
0: जब तक संजम ना तुद होर मुच गुरूर वरे दरगे गुरु की कुदरती नूर नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर नेड़े दिसे मात लोग तुस जे दूर फिर वसाया फिर वार सतगुर खाडूर
1: सो टिका सो बहना सोई दीवान
0: दियो दादे जे विहा पोता परवान
1: निवास गुनेत्रे कत्या कर नहीं तान
0: जिन समुद्र विरोलिया कर मेर मदान
1: चौदह रतन निकाले अनकी तोन चानान
0: अकी तो सहजदा जत कियो पनान
1: कण चढ़ायो सतदा जसंदा बाण सतो खेत जमायो सतो शावान
0: मित्रो सही तेरी है देवी
1: चारे गुंडा सूजियो मन में शब्द प्रवान
0: कर मदन निशान
1: उतरिया उतार ले सो पुरख सुजान
0: जखड़ वाव न डोलई पर्वत मेरा
1: जाने वृता जी की जानी हूँ जान
0: क्या सलाई सच्चे पातशाह जातु सुवर सुजान
1: दान जी सतगुर पावसी सो सत्य दान
0: नानक अंधा छत्र सिर उम्मत हैरान।

0: सक्यत जनम कल उचरे गुर परस्यो अमर परगास।
1: बारिच कर दाहने सिद्ध सन्मुख मुख जो वै रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह है हृदय बसे अखियो सोई रस तिन ही जातो मुखो भगत उचरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो करम कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सरब इच तिन पायो। मस्तक निशान सच्चो करम कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सरब इच तिन पायो।

0: ते नर सह सहस समेपे ते नर दुलीचे बहे ते नर उथाप बिख पे सुख ले त नर संसार में अबे पट रिप मद ते सकेथ ते नर जल पने गुरु अमरदास प्रसन्न जय सुख ले त नर संसार में अबे पट रित मत दे सकेथ ते नर जल पने गुरु अमरदास सो प्रसन्न जय
1: आप नारायण कलातार जग में परवरियो

संग्रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास।

0: प्रसाद कथित है के अच्छे जिस है के आप जिप के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
1: हमें सुसलाम है समस्तुल कलाम है
0: के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चराग है
1: के नामुल करीम है के राजक रहीम है
0: के रोजी द हिंद है के राजक रहिंद है
1: करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है
0: गनीमुल खिराज है गनीबुल निवाज है
1: हरीफुल शिकन है रासुल फिकन है
0: कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है।

0: तो
1: हमें तो पसा है कि आत्म प्रभा है मधुबार संत प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अनगन प्रणाम मुनमन सलाम पवनास मुनमन प्रकाश।

आठ तरम अत टीठ करम हर बोल बना चंद त्व प्रसाद करणालय है अर्कालय है जगदेश्वर है परमेश्वर।

0: आकलन कृत है सर्वाकृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है
1: आदम बस है जस के जस है
0: भुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्य।

0: रूपे न रेखे
1: भुजंग
0: पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे निर्कामन विभूते समस्तुल स्वरूपे सदा सच्चिदानंद।

0: मुँह लेना कीजे जित अंत पछोताइए।
1: सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
1: अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया।
0: अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने।
1: जी जन सब खेल तेरा क्या को आग बगाने।
0: आखे तब एके सब तू है जिन जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया।
0: सुर नर मुंजन अमृत खोजते सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
0: जी जन सब तुत उपाय एक वेख प्रसन्न आया।
1: लाभ लो बंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: लभ लोभ अहंकार तत तृष्णा बहुत नाही बोलना।
1: कन्हो तिकी वालो निकी एत मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी।
1: कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली।
0: जी तू चलाए तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
1: जी तू चलाए तिवे चले जिना मार्ग पावे।
0: कर कृपा जिन नाम लाया से हर हर सदा त्यावे।
1: जिसनु कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहेब जो पावे तिवे चलावे।
1: यो सहेला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सहेला सतगुरु सुनाया।
0: ए तिन के मन वस्या जिन तुरो लिखिया आया।
1: एक फिरे कनेरे करे गला गली किने ना पाया।
0: कहे नानक सबद सुहेला सतगुरु सुनाया।
1: पवित्त होए से जना जिनी हर त्याया।
0: हर त्याया पवित्त होए गुरमुख जिनी त्याया।
1: पवित्त माता पिता कुटुंब सहित सो पवित्त संगत सुभाया।
0: कहंदे पवित्त सुन दे पवित्त से पवित्त जिनी मन वसाया।
1: कहे नानक से पवित्त जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
0: करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए।
1: न जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए।
0: सहसे जीव मलीन है कित संयम तोता जाए।
1: मान तो वो सब गला को हर्षो रो चित लाए।
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।
2: जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: ए तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया।
1: वेदा में नाम उत्तम जो सुने नाही फिरे जो बेतालिया।
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागी तिनी जन्म जुए हारिया।

0: उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिय।
1: मनो क्यों विसारिय वरदाता जी अगर मैं आहार पहुंचावे।
0: कोई पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए।
0: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिय।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया।
1: जात स्पाणा ताज मैं परवार पला पाया।
0: लिव छुड़की लगी तिसना माया अमर वरताया।
1: ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे तिने विचे माया पाया।
1: अरे आप मुलक है मुल न पाया जाए।
0: मुल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सोपिए विचो आप जाए।
0: जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: अरे आप

0: पल में दल ढारे
1: खंड खंड प्रचंड बहारण पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद मापद भेद कते अपेद उचारे
1: रोजी राज विलोक दराज करो करहान की रोजी न टारे
0: कीट पतंग कुरंग पुजंगम भूत पवे।

0: पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाथ सनंतन त्यायो।
1: ध्यान करो देखो मन में जय को अमित सब जग छायो।
2: देव पुराण वेद पान सब बच
1: वेद
0: वेद वेद पुराण कतेब कुरान अपेद निरपान सबे पचहारे।
1: वेद न पाए सके अनपेद को खेदत है अनशेद पुकारे।
3: राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोख न संग तिहारे।

0: विनती सुन ली जाए
1: और न मांगत हो तुम ते का चाहत हो चित में सोई की जाए।
0: सोवा तीरान पीतर जूझ मरो तो साच पति जाए।
1: संत सहाय सदा जगमाए कृपा कर श्याम है बर दीजे।
0: सैया दे शिवा वर मोहे है शुभ कर्म ते।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर
1: गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदर सहोदरा
0: दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मान निरोधरा
1: गुरुदेव सांसद बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पार्श परस्परा
0: तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मंजना परंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत हा जपुदरा
1: गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा
0: गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म

ज्ञान ध्यान कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरू जी जैत सरी महला पंजवां।

0: जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: ऐसी बच्चा कवनवीर सिंह, गुरु बख्शिश करे, चढ़दी कला बख्शिश करे इस बच्चे नूं। उस तो अगला जो पार्टिसिपेंट्स है, बच्ची अवनूर कौर सिधाना, उस स्टेज पर आ जाए। उस तो बाद विचों जसमायरा कौर, वह भी स्टेज के पिछे आ जाए। हुण आप जी नूं बच्ची अवनूर कौर सिधाना शब्द नाल निहाल करेगी। आओ बच्ची अवनूर कौर।